ब्यूटी इंडस्ट्री की दुनिया में अपना करियर बनाने बारे सोच रहे हो तो हो जाओ टेंशन फ्री। अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तुहाडे ऐसे करियर ते ड्रीम्स नु दिखाने के सही राह जो प्रोवाइड करते हैं सब तो बेहतरीन ते कंप्लीट कोर्स पैकेज पूरे कनाडा विच। हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा, मेडिकल एस्थेटिक डिप्लोमा, ये सब दे नाल नाल अमायरा एकेडमी अपने यूनिक ते सुपर सैटिस्फाइंग हेयर सर्विसेज एंड स्पा ले भी जाने जाते हैं। हुणे कॉल करो 9053996110 ते और विजिट 114 कैनेडी रोड यूनिट 2 ब्रैम्पटन ओंटारियो। स्वाद दे मामले विच कॉम्प्रोमाइज कदे भी नहीं करना चाहिदा, इसे लिए तुहाडे लिए है विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। 1999 तो लैके ब्रैम्पटन नू सर्व कर रहे हैं विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। लुत्फ उठाओ स्वादिष्ट पंजाबी खाने दा, बुफे डाइन इन टेक आउट केटरिंग लंच दे डिनर सारा कुछ है। स्वीट्स दे स्नैक्स दी वड्डी कलेक्शन भी है जो की तुहानू जरूर पसंद आएगी। ते फिर देर किस गल दी, अज ही कॉल करो 905-450-3333 ते एड्रेस विलेज ऑफ इंडिया 114 कैनेडी रोड साउथ Brampton। ब्रैम्पटन विच जे तुसी लभ रहे हो बेस्ट क्वालिटी ते इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ता फिर तुहाडी टेंशन हुण छूमंतर हो जावेगी। आओ ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी ते जिथे मिलदे ने फ्रेश वेजिटेबल, स्पाइसेस, स्नैक्स, ग्रोसरीज ते किचन आइटम्स सब इको था ते एंड माइंड ब्लोइंग वैरायटी नाल तुहानू लघु शॉपिंग दा मजा असली पंजाब वर्गा। याद रखो 100 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9052304800 ते या ईमेल करो brampton cashandcarry2023@gmail.com ते।

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 647702 B23
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: जेकर थोड़ी एज 40 साल तो घट है ते अगले 20 सालां लई तुसी लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस दा कॉम्बो प्लान लेना चाहुंदे हो ता $99 ले सकदे हो। ज्यादा जानकारी लई तुसी मैनू कॉल कर सकदे हो 6477065243 4 6477065 2340।
3: You're listening to Guntas Radio on AM 530 from 10 to 11 a.m. Monday to Friday with Jazz Tagar, your favorite show.

वाह जी वाह, बड़ी ही खूबसूरत है कवाली है। इस कर्म का करूं शुक्र कैसे अदा। सो मैनू तो लगता है कि फर्स्ट टाइम, मैं तो फर्स्ट टाइम ही लगाई और सुनी भी पहली बार ही है। कई बार कई मकबूल कवालियां होर होंदियां ते आपां ज्यादातर उन्हां नूं ही बार बार लाउंदे आ ना, पर बड़े ही प्यारे बोल है ते कमाल ही है। और किसी ने बड़ा वधिया जिहड़ा कमेंट भी किया है, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है उनका वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। वाह जी वाह।

डोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट हुण 3 लोकेशन तो सर्व करते ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1 8 5

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स। हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बम रोड टोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165।
1: The wait is finally over. Gordy Kumin of Remax Gold Realty proudly presents another golden opportunity to own premium retail and office space in South Caledon. Introducing Caledon Commercial Center, a new 15-acre commercial development located at the prime intersection of Highway 10 and Highway 410. Retail and office units are now available for sale. Secure your space in Caledon's next commercial destination. Contact our team at Remax Gold Realty to book your unit today.
2: मैं बलजिंदर सिंह नहल अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है। सड़कां तो पार्कां तक, ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक, क्राइम तो करप्शन तक। चंगा शहर सिर्फ वादियां नाल नहीं काम नाल बनता है। तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणां तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है। वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी कौंसलर कैंडिडेट वार्ड 9 और 10।
3: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
4: आज
5: बॉलीवुड मूवीज ने टीवी शोज वेब सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल इंजॉय करने वर्ल्ड बेस्ट हाईएस्ट क्वालिटी वाला आईपीटीवी बॉक्स है। ते नाले ढिल्लो वीडियो कोल गुरबाणी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री। होर दस क्या चाहिए था?
6: क्यों कह रहे हो पर?
5: ओ पाजी सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस।
7: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
5: पर ढिल्लो वीडियो ते जदो मर्जी आ जाओ। एबनीजर एंड गौर रोड 905-204-1313 जा ढिल्लोवीडियो.com। होर कोई सेवा
8: दोस्तों मैं रविंदर वडाली ते मैं आ रहे जी 11 अक्टूबर नो टोरंटो रोज थिएटर ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ
9: ਬਦਨਾਮ ਕਰਤੀ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਚੋਰੀ ਲੋਕਾਂ ਬਦ
8: ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਸ਼ੋਅ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो इसीलिए आपने अपने टिकट बुक कर लो ताकि इस बार इस शो मिस ना करो। तो मिलते हैं फिर 11 अक्टूबर नो टोरंटो रोज थिएटर शाम 7 बजे।

0: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157
1: 416-570-0157 What's up everybody, this is Jasmine Sandler, ते तुसी सुन रहे हो वतनों दूर with सुखीर निज्जर।

0: जी देखा जी, एगेसन शेर मियां दास साहब और मैं इन्हां नूं वेलकम करना शेर मियां दास साहब नूं, क्योंकि स्टूडियो पहुंच चुके हैं। शेर मियां दास साहब, पहले तो अपने बारे दसो भी, तुहानूं इस सदारती अवार्ड भी मिले है और उनके बारे थोड़ा दसो, तो फिर तुसीं एक बाबा बुले शाह साहब का कलाम ही सुनाओ साडे लिसनर जिहड़े तुहानूं सुनना चाहते ने। कोई फिर
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सब तो पहले तो मैं सब जिन्हें सानू सुन रहे ने इन्हां नूं अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जिन्हें भी साडे ऑडियंस इस वतन दूर नूं सुन रहे ने,
0: बहुत शुक्रिया।
1: और दूसरा सदारती अवार्ड मिले, मैं अल्लाह पाक दा शुक्र अदा करदा, क्योंकि साडे इस घराने नूं कौल बच्चा घराना कहा जांदा है, जिहदे च मेरे वाले साहब, मेरे वड्डे भाई उस्ताद बदर मियां दाद खान, उस्ताद मियां दाद खान साहब, मेरे दादा जी दीन मुहम्मद खान दी ना जलंधरी, क्योंकि असीं बिलोंग जलंधर तो, ते दूसरे दादा जी फतेह अली खान, मुबारक अली खान, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, उस्ताद राहत फतेह अली खान,
0: क्या बात है।
1: ते साडा इको ही खानदान है, ते इत्थे आके मैनूं बहुत खुशी होई।
0: अच्छा जी।
1: ते क्योंकि नासर शाह साहब तुसीं मेरे इनवाइट कीता है, ते मेरा धन भाग ते निस्बत है हजूर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह नाल
0: जी,
1: ते ओह निस्बत दी वजह तो अल्लाह पाक ने इज्जत रखियां हैं बड़ियां,
0: ते
1: क्योंकि सूफी कवाली है, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਬੂ ਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ।
0: ਅੱਛਾ ਜੀ।

0: रिन्यूअल के टाइम पे अगर उनकी मॉर्गेज पेमेंट इंक्रीज हो जाए तो हाउ दे गोना मैनेज द मंथली पेमेंट।
1: अच्छा जी।
0: तो सबसे उसके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज ये है, और उसके लिए कपल ऑफ इश्यूज हैं। एक तो अगर आपकी मंथली पेमेंट बढ़ जाए, अगर आपके कुछ इनकम इश्यूज आ गए हैं, आपकी इनकम कम हो गई है, आपके क्रेडिट आपके जो है नीचे हो गया है, और आपको ये फियर होता है कि मेरी मॉर्गेज रिन्यू होगी नहीं होगी, ये भी कंसर्न है, क्योंकि काफी होम ओनर को रिन्यूअल्स लेटर नहीं आ रहे, और इनफैक्ट बैंक इज डिक्लाइनिंग टू रिन्यू बेस, मे बी दे हैव मिस सम मॉर्गेज पेमेंट, मे बी दे हैविंग सम डिफरेंट इन्फॉर्मेशन इन देयर रिकॉर्ड। तो बहुत सारे रीजन हैं रिन्यूअल के टाइम पे, बट हम अभी वो बताएंगे कि जिसके अंदर क्लाइंट को हेल्प करेगी। देखिए, आपका रिन्यूअल जो है किसी भी होम ओनर का, रेजिडेंशियल रिन्यूअल की बात हो रही है, 5 से 6 महीने पहले ये एक्टिवेट हो जाता है। मतलब आपको ईमेल भी आ जाएगी, आपको मोबाइल ऐप में भी नजर आएगा, आप ब्रांच विजिट कर सकते हैं। अच्छा, और इसके अलावा किरण जी, बहुत ही बेसिक कंसर्न ये रहता है कि मैं क्या रेट लूं, फिक्स रेट लूं या वेरिएबल रेट लूं, है ना, मेरे लिए क्या बेटर है। देखें, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, फिक्स रेट भी आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर आपको घर नहीं बेचना 2-3 साल में, आप फिक्स रेट लें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 6 महीने 1 साल में जब और अच्छे घरों की प्राइस हो जाएगी बेचेंगे, तो वेरिएबल रेट लें, क्योंकि वेरिएबल की पेनल्टी कम पड़ती है। अच्छा, दूसरी बात है कि वेरिएबल का रेट अभी कम है, राइट, फिक्स का रेट थोड़ा ज्यादा है। देखें, सिचुएशन प्राइम रेट कल 7% भी हो जाए, बट फिक्स रेट एक दफा लॉक करवा लिया, वो चेंज नहीं होगा। वो आपके उसके अपने बेनिफिट्स है। अभी इस वक्त फिक्स जो है वो 4.19 से लेके 4.59% है, 3 to 5 year फिक्स्ड, है ना। वेरिएबल रेट वो कम है, 3.49 से लेके 3.79 के दरमियान है, 3 to 5 year। और काफी लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि प्राइम रेट इंक्रीज हो सकता है ये वाले अनाउंसमेंट में, October 28, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, October 28 इज द डेट, तो इज अ बैंक ऑफ कनाडा गोइंग टू अनाउंस। तो मैसेज यही है कि अपनी तैयारी 3 से 4 महीने पहले करें रिन्यूअल्स की, राइट किरण जी। और इसके अलावा आप शॉप अराउंड भी करें, और आपके देखिए मल्टीपल डेट्स हैं, क्रेडिट कार्ड डेट्स हैं, सेकेंड मॉर्गेज हैं, तो रिन्यूअल के टाइम पे अपने बैंक से बात करें कि आप उसको भी पे करना चाहते हैं, मगर आपको लग रहा है कि बैंक नहीं हेल्प कर रहा है, या आपके कुछ इनकम इश्यूज हैं, क्रेडिट इश्यूज हैं, आप मेरी तरह किसी भी प्रोफेशनल को रीच आउट करें। आई एम हियर टू गिव यू द इन्फॉर्मेशन जो आपके हक में बेटर है, जो आपके जिससे आपको सेविंग होनी चाहिए महीने की $2,000-3,000 की। अगर आपके देखिए रिन्यूअल एक अपॉर्चुनिटी है सेविंग करने का, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, मिसेस सागर से, मिसेस सागर में होता हूँ मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 10 to 6 PM, सैटरडे को ओनली लिमिटेड टाइम। सो दिस इज मुकेश चौहान, मॉर्गेज ब्रोकर फॉर मॉर्गेज डिलीजन। नंबर टू कॉल मी 6475127000, 6475127000।
1: बिल्कुल मुकेश जी, एक सवाल मेरा और है, वो हम क्विकली जो है कवर कर लेते हैं। अच्छा, अगर जो है होम ओनर्स को जो है बैंक ने ऑफर भेजा, क्योंकि रिन्यूअल आ रहा है ना, सो इंटरेस्ट रेट हाई है, स्टिल हमें स्विच करके देखना चाहिए, शॉप अराउंड करना चाहिए, कि जस्ट सिंपली हमें वो साइन कर देना चाहिए कि जो है ठीक है, आपका क्या ओपिनियन है?
0: देखें, ट्रांसफर के 2 रीजन हो सकते हैं ट्रांसफर करने के। अगर आपका मॉर्गेज लिए हुए आपको 15 साल पहले ली थी, 10 साल पहले ली थी, तो आप उनको रीफाइनेंसिंग करके उसकी एमोर्टाइजेशन इंक्रीज कर सकते हैं। जब एमोर्टाइज आप जैसे दोबारा 30 साल की करोगे, तो महीने की किश्त आपकी $1,000-2,000 कम हो सकती है। मैं इंपॉर्टेंट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, काफी लोगों को नॉलेज नहीं है, काफी लोग ये समझते हैं, काफी लोगों का मन में ही होता है कि रिन्यूअल का टाइम पे दोबारा बैंक इनकम डॉक्यूमेंट मांग लेगी, या आपको है ना डॉक्यूमेंट बैंक आपकी इन्फॉर्मेशन, अगर बैंक को कोई डाउट होगा तो मांगेगी, अदरवाइज नहीं मांगेगी, 99% पे नहीं मांगती है। दूसरे केस के अंदर यह है कि अगर आपको स्विच करना तभी फायदा है जब आपको अगर उसकी मंथली पेमेंट बहुत ज्यादा पड़ रही है, जैसे एग्जांपल है आपकी टीडी बैंक या आरबीसी बैंक के साथ है, आप वो चाहते हो मॉर्गेज आपकी जो है बहुत ज्यादा है, आप चाह रहे हो कम हो जाए, तो उसके लिए फिर आपको रीफाइनेंसिंग करनी पड़ेगी, एमोर्टाइजेशन कम बढ़ानी पड़ेगी, मंथली पेमेंट आपकी शॉर्ट हो जाएगी। और हाँ, और साथ साथ ये कि आपके मल्टीपल डेट्स हैं, क्रेडिट कार्ड डेट्स पे करने हैं, घर में एक्विटी है, आपको प्रॉपर्टी टैक्स बिल 2-3 साल से नहीं पे किया, तो रीफाइनेंस के थ्रू ये सारे आप पे कर सकते हैं। तो वंस अगेन, दिस इज मुकेश चौहान, मॉर्गेज ब्रोकर फॉर मॉर्गेज डिलीजन। इसके अलावा अगर आपको पास आपकी मॉर्गेज 2028 या 30 में रिन्यूअल है, आपको अलग से फाइनेंसिंग चाहिए, आपको इमीडिएट इमीडिएट फंड चाहिए, ठीक है, कैश इन एंड चाहिए, दो तीन दिन में, चार दिन में, आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू गाइस। घर में इक्विटी होनी चाहिए, घर की वैल्यू चेक करवानी है, आप मुझे अपना घर का एड्रेस और नाम बता सकते हैं, मैं चेक करके बताऊंगा आपको। और मुझसे मिलना है तो मैं मिसेस सागा में हूँ मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे फॉर लिमिटेड आवर्स। दिस इज मुकेश चौहान, मॉर्गेज ब्रोकर फॉर मॉर्गेज डिलीजेंस। नंबर टू कॉल मी 6475127000। किरण जी, नेक्स्ट टाइम हम कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग में कुछ बात आप कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग में जिनको अपना अपना घर हाउस बिल्ड करना है, जो कस्टम हाउस बनाना है, उसके लिए फाइनेंसिंग लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है, अगर उसमें आपको कोई डिस्कस करनी है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प एंड गिव मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दैट कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग।
1: बिल्कुल, थैंक यू सो मच। कल बात हो सकती है 6475127000, 6475127000 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਕਐਂਡ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇੰਜੋਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸੋਮਵਾਰ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਰਡ 9-10 ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵਾਰਡ 9-10 ਤੋਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹਿਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਫੇਰ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰਡ 7-8 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਰਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਵੱਖੋਂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਪੌਂਸਰਸ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲਾ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੀ 6475327000 ਤੇ। ਔਰ ਮੋਨਾ ਮਹਿੰਗੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ 4165091509 ਤੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ।

0: ਆਪ ਨਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ
1: ਫੋਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-725-2551 416-725-2551
2: Simply Indian brings you all simply delicious deals buy one get one free every day sure 10 to sham 7 baje tak on dine in and take outs maza lavo sunday no paratha plate monday manpasand kulcha plate tuesday chana bhatura wednesday lajawab veg thali thursday yummy haka thali friday maza lavo saag makki di roti da eh yummy deals are simply indian this sariya hi locations te dining take out and catering also available call at 905-794-8111 simply delicious matlab simply
3: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
4: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
5: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 416-457-3381
3: ਨਾਲੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣਗੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਿਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-457-3381 416-457-3381